0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
3: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से H सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
3: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
3: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
3: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
3: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके

0: द्वारा और किसे दिया गया?
1: इसका उत्तर है बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
0: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है?
1: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय।
0: जी,
1: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
1: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है मेरे सत्य के प्रयोग।
0: जी, और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हो जाइए तैयार, हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं?
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
0: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
2: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है।
0: जी,
2: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से।
0: जी,
2: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है। और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है,
0: जी,
2: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं। और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश

0: करते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहाँ से लें उसके बारे में, और तीसरा आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए।
1: जी,
0: इसी तरह हमारे पाठ्यपुस्तक में आप देखिए जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
0: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षण हम कैसे करें। ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारत वर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है। क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे।
1: जी,
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहाँ मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं, और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं, और बच्चे आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्ट

0: पर्सपेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं हमारी,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारे पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत है, उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ही होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य है, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6 से 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है, और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए, और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी,
1: जी
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान

0: दिया है, उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहाँ जहाँ समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है, जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अक्कबा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है, और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है, पर कुछ कारणवश जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको
1: जी
0: खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला, महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: हाँ, कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल
0: सब
1: महिलाएं देखी जा
0: सभी
1: सकती हैं।
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत
1: जी
0: जी।
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
3: अरे वाह, पौधा निकल आया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
3: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
4: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,
5: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
2: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
4: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
2: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
3: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: सुनुथले सीआईटी द्वारा प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रम उमंग सुनुथले यार 1386 अध्याय। श्रोता बंधु, आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र वर्तमान समय अपराह 5:30 प्रचार करुच्छ युवश्रोता उद्दिष्ट कार्यक्रम युववाणी शुणिपर यह विज्ञापन पर।
6: कम समय रे अधिक फायदा मात्र गोटे क्लिक रे बढ़िया पसिला
7: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही। आरबीआई कहे
8: सचेतन हुंतु सतर्क रहंतु।
9: बोका सुधुरी जा।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
4: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम्प के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: Minister of State for Chemicals and Fertilizers Anupriya Patel today said the government is prioritizing the chemicals and petrochemical sector to fulfill the larger national goal of becoming the third largest economy in the world. The minister said this while launching the 14th edition of the India Chem with the theme Advantage Bharat, an emerging global chemicals hub in New Delhi. And benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382, while Nifty settled at 22,556. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी भवानी पटना शुणंतु कार्यक्रम सूचना प्रथम शुणंतु चलित अधिवेशन रे प्रचार होता कार्यक्रम संपर्क रे संध्या 6:30 रे शुणिबे समन्वित कार्यक्रम युवा शक्ति जिला हलचल क्रम शुणिबे खोर्धा जिला संपर्क रे राति 7:25 रे ए कार्यक्रम द्वारा रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु राति 7:30 रे शुणिबे चासी भाई भणी मानक पई कार्यक्रम चासपास गीत गजल कार्यक्रम प्रचार करिबु राति 8:00 शिल्पी हेले रूप कुमार राठोड़ राति 8:15 शुणिबे आंचलिक गीत क्रम संबलपुरी गीत शिल्पी मान हेले धीरेन्द्र कुमार नायक एवं पद्मिनी बैठारू राति 8:30 स्पॉट स्कैन स्पॉटलाइट 9:15 पब्लिक स्पीक राति 9:30 ए समस्त कार्यक्रम रिले करि प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आज राति 10:00 शुणिबे नाटक घटक रचना गोपाल छोटराय प्रयोजना किशोर महांती एथिला चलित अधिवेशन रे प्रचार होता कार्यक्रम संपर्कित सूचना एथर शुणु आसंता काली विभिन्न अधिवेशन रे प्रचार होता कार्यक्रम संपर्क आगामी काली प्रथम अधिवेशन रे सकाळ 6:10 शुणिबे भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना शिल्पी मान हेले गोविंद चंद्र सेनापति भारती भुईया गगन बिहारी स्वाई रमाराणी बारिक एवं महेश्वर राव सकाळ 6:30 शुणिबे चेतना चिंतन उपस्थापना सचिदानंद मल्लिक सकाळ 6:35 प्रचार करिबु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित पवित्र श्रीमद भागवत सकाळ 7:25 रही ओडियार आलोचना एथिरे शुणिबे पाणी फटकार जीवन आलोचक हेले डॉक्टर रवींद्र कुमार मिश्र चासर कथापी समय रही सकाळ 7:40 सकाळ 7:45 कार्यक्रम संगीत लहरी एथिरे शुणिबे केतोटी ओडिया आलबम गीत शिल्पी माने हेले महम्मद अजीज ईरा महांती एवं शक्ति मिश्र सकाळ 8:30 राज्यस्तरीय प्रसारण रे शुणिबे पीठ परिक्रमा ए क्रम रे शुणिपरिबे आकाशवाणी केन्दुझर केन्द्र द्वारा प्रस्तुत घटगाँ माँ तारिणीक संपर्क रे प्रयोजना जयराम मुंडा सकाळ 8:45 शुणिबे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेश विलास प्रयोजना प्रसन्नजित महांती एवं डॉक्टर शांतनु कुमार रथ 9:00 शुणिबे हिंदी कथाचित्र गीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 वर्ष पूर्ति अवसर में विशेष कार्यक्रम रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र सकाळ 9:10 9:45 शुणिबे ओडिया कथाचित्र गीत परे पूर्वाह्न 10:10 प्रचार करिबो विशेष कार्यक्रम खोला झरका द्वितीय अधिवेशन रे दिन 12:00 शुणिपारे सुगम संगीत शिल्पी हेले जोगेन्द्र महापात्र गीताराणी दास एवं बनबिहारी जेना 12:30 माननीय सु दिन 8:10 शुणिबे कार्यक्रम चासर कथा दिन 8:20 शुणिबे महिला मानक पई कार्यक्रम शक्ति रूपारे सीधा प्रसारण कार्यक्रम हेलो डॉक्टर दिन 2:45 प्रचार करिबु हिंदी कथाचित्र गीत तृतीय अधिवेशन रे अपराह 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जुबवाणी शुणिबे लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतटीए मितटीए अपराह 5:30 संध्या 6:30 रही लोकगीत क्रम खंजाणी भोजन परिवेषण करिबे शंभु हाथी एवं साथी राति 7:25 जिला हलचल क्रम शुणिबे कोरापुट जिला संपर्क में रिले कर शुणिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु राति 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणी शुणिपरिबे आकाशवाणी कटक केन्द्ररु राति 8:00 प्रचार करिबु देश वंदना राति 8:15 शुणिबे हिंदी भक्ति गीत शिल्पी हेले दिलीप कुमार राय पुरुषोत्तम दास झलोटा राति 8:30 स्पॉट स्कैन 9:15 स्पॉटलाइट 9:30 मनीटक एवं मंथन कार्यक्रम ए कार्यक्रम रिले कर प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु राति 10:00 प्रचार करिबु आपण मानक अनुरोध रे हिंदी कथाचित्र गीत राति 10:30 शुणिबे शास्त्रीय संगीत क्रम सितार वादन शिल्पी हेले

0: ଭେଷଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ସମ୍ବାଦ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।
1: दीदी तमे औषध खाई मो मलेरिया ज्वर पूरा भल
2: किंतु देह भल हो पुणी से भूल कर दिन हो कि राति शोवा बेले मशारी टांगिकी शोब आज घर आखपाखे पा जमे को मोटे दबनी
1: आपण मान भी मन रखु ज्वर हवा मात्रे अति शीघ्र निकटस्थ आशा किंवा स्वास्थ्य कर्मी सहित परामर्श कर रक्त परीक्षा करु आदि यह मलेरिया तेज औषधर पूरा मात्रा खाई सुस्थ हुवंतु आउ हां गुणीगारिडी किंबा झड़ाफुका पाखकु केबे भी जांतु नहीं भाबुछंते कि एथिपई केते पैसा खर्च हबो संपूर्ण मागणा मलेरियार रक्त परीक्षा औषध चिकित्सा समस्त सरकारी स्वास्थ्य केंद्र रे मागणा रे उपलब्ध सचेतन हुवंतु मलेरिया ठारु निजको सुरक्षित रखंतु।
3: आपण मनी कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
4: आजिर प्रसंग निरंतर विकास पाई सुपर कंप्यूटिंग आलेख्य आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापन रे मु आशुतोष पति। फसल उत्पादन परिमाण पूर्वानुमान करिबा ठारु आरंभ करी रोग पोकर समीक्षा औषध क्षेत्र में आविष्कार को अधिक त्वरान्वित एवं बन्या जोगुं हेबाकु थिबा क्षयक्षति संपर्क में आकलन करने आदि विभिन्न क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एक समय रे बहु परिमाण तथ्य प्रक्रियाकरण करी सुपर कंप्यूटर आवश्यक सूचना प्रदान करिथाय। पारंपरिक कंप्यूटर अपेक्षा खूब कम समय रे बहु जटिल समस्यार समाधान करिबारे एहा सक्षम होइथाय। अनेक समय रे एहाकु समांतराल कंप्यूटर बोली मध्ये आख्या दिया जाइछि। यार अर्थ हेउछि एकाधिक सीपीयू एक निर्दिष्ट समय रे तथ्य विश्लेषण करिपारिबा। सुपर कंप्यूटर शक्ति को फ्लॉप्स किंबा प्रति सेकेंड रे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस द्वारा माप करा जाए अर्थात प्रति सेकेंड रे कंप्यूटर केते गणना करिपारिबो। एभली द्रुत तथ्य विश्लेषण गवेषकंकु विभिन्न आह्वानर त्वरित समाधान दिगरे सहायता प्रदान करुछि। भारतर वर्धित डिजिटल इकोसिस्टम उन्नत कंप्यूटिंग भित्तिभूमि पई उपयोगी सब्यस्त होउछि। आकलन अनुजाई विश्वस्तर रे आवश्यक पड़ुथबा तथ्यर 20% भारत सृष्टि करि पारुछि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाणिपाग पूर्वानुमान महाकाश गवेषणा आदि क्षेत्र पई एहा गुरुत्वपूर्ण सब्यस्त होइछि। एहाकु दृष्टि रे रखी सरकार गवेषणात्मक प्रतिष्ठान गुडी करे सुपर कंप्यूटर उपयोग को अधिक व्यापक करुछंती। आत्मनिर्भरशील भारत गठन रे एहा अधिक सहायक हेबा सह दक्षता वृद्धि क्षेत्र को सशक्त करुछि। देशव्यापी कंप्यूटिंग क्षमता को अधिक सुदृढ़ करिबा लक्ष्य नै 2015 एप्रिल मासरे जातीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन आरंभ करा जायथिला। एथिपय 4,500 कोटी टंकार व्यय अटकल प्रस्तुत होइथिला। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विभाग एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय द्वारा मिलित भावे ए मिशन परिचालित हेउछि। सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरशीलता सृष्टि करिबा एवं देशरे कार्यक्षम थिबा उच्च कंप्यूटिंग क्षमता को अधिक सुदृढ़ करिबा ए मिशन रो मूल लक्ष्य। देशरे विश्वस्तरीय प्रतियोगितामूलक सुपर कंप्यूटिंग इकोसिस्टम प्रतिष्ठा करिबा ए मिशन रो अन्यतम उद्देश्य। पुणे स्थित उन्नत कंप्यूटिंग विकास केन्द्र सीडाक एवं बेंगालुरु भारतीय विज्ञान संस्थान ए मिशन को कार्यकारी करुछंती। स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग भित्तिभूमि प्रस्तुत करिबा लक्ष्य नहीं ए मिशन तीनोटी समकालीन पर्याय को नहीं एक निर्माण पद्धति अनुसरण करुछि। सेगुड़िक हेउछि आसेम्बलिंग बा जोड़ीबा उत्पादन एवं डिजाइन और उत्पादन रे सहायता। यह पद्धति माध्यम रे स्वदेशी दक्षता को विकास करा कंप्यूटिंग भित्तिभूमि व्यापकता वृद्धि पाउछि। मिशन अधीन रे सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र रे भारत आत्मनिर्भरशीलता गतिशील हेउछि। प्रजुक्ति विद्या आमदानी उपर निर्भरशीलता ह्रास पाइबा सह स्वदेशी प्रस्तुत कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को यह अधिक सुदृढ़ करिबो। 1990 मसीहार प्रारंभ में परम 8,000 भारत सुपर कंप्यूटिंग यात्रा आरंभ होता बेले गतमास सुधा यह जातीय मिशन अधीन 40 सुपर कंप्यूटर उपयोग द्वारा ए क्षेत्र में दक्षता अधिक व्यापक हो। मिशन मिलित जातिसंघर 11 क्षेत्र में निरंतर विकास लक्ष्य हासिल करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि। सेतिमध्यरे बन्या पूर्वानुमान बनाग्नि परिचालना जलवायु परिचालनार मुकाबिला एवं उच्च क्षमता संपन्न कंप्यूटिंग व्यवस्था

0: Krista. आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र जुहार पहला मुखिया खबर ओडिया सिनेमार विकास लगी भुवनेश्वर अत्याधुनिक कलिंग स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कले मुख्यमंत्री छात्र संसद निर्वाचन लगी राज्य सरकार को घोषणा 15 तारीख हेबा भोट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना थी संस्कारमूलक पदक्षेप लगी जातीय स्तर ओडिशा पुरस्कृत आउ भेषज विज्ञान लगी आमेरिका और जर्मानी तीन जन वैज्ञानिकों को मेडिसिन लगी नोबेल पुरस्कार घोषणा एथर पूरा खबर नुआकर विकास करा भुवनेश्वर कलिंग स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज उद्घाटन करिछन आधुनिक भित्तिभूमि नुआ शूटिंग सेट आउ आधुनिक उपकरण सहित स्टूडियो नवकलेबर होइछे 164 कोटी टंका खर्चा थी 5 बछर तक स्टूडियो पुनरुद्धार काम चलीथिला ओडिया सिनेमा शिल्प लागी इटा गोटे आधुनिक प्रोडक्शन हब हेबार सहित विश्व स्तर चलचित्र निर्माण सुविधा दे पारबा आधुनिक साउंड आउ रेकर्डिंग सुविधा एडिटिंग सुइट विजुअल इफेक्ट सुविधा आउ आधुनिक शूटिंग उपकरण सहित भिन्न भिन्न विषय वस्तु शूटिंग सेट भी तैयार कर उद्घाटनी समारोह थी शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाईं सहित विधायक माने आउ सिनेमा जगतर बहुत विशिष्ट व्यक्ति जोग दे राज्यर सबु कॉलेज आउ विश्वविद्यालयन इ बछर छात्र संसद निर्वाचन कराजिबा लागि निष्पत्ति हेछे बोली उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिछन भुवनेश्वर मुख्यमंत्रीकर कार्यालयन बैठक उत्तर गणमाध्यम के सूचना देखि श्री सूरज कहिछन आइबा 15 तारीख छात्र संसद निर्वाचन हेबा कॉलेज तरफ आइबा बुधवार दिन विधिवत विज्ञप्ति बाहरिबा शुक्रवार दिन नामांकन पत्र दाखल 10 तारीख प्रत्याहार 14 तारीख वाईआई स्टैंड फॉर मीटिंग 15 तारीख दिन कॉम्प्लेक्स कैंपस वोट आर 16 तारीख दिन शपथ ग्रहण उत्सव हेबा निर्वाचनी इच्छार्थी कॉलेज निर्वाचन करबार के सरकार प्रतिश्रुति देथिले युवा नेतृत्व के आके नेबार लक्ष्य नै कि सरकार इ निष्पत्ति ग्रहण करिछन बोली मंत्री श्री सूरज कहिछन
1: चलित वर्ष ओडिशा रे छात्र संसद निर्वाचन माननीय मुख्यमंत्री निर्वाचन करबा पई सदय स्वीकृति प्रदान करिछन्ति ए इलेक्शन करबाटा ओडिशा रो जे युवा नेतृत्व माने अछन्ति से माने आसंता काली रो आम आगधाडी रो नेतृत्व हेबे से को गणतंत्र रो दायित्व गणतंत्र रो गुरुत्व एवं संवैधानिक मूल्यबोध को बुझे सेमानको आसंता कालीर नेतृत्व नबा पई प्रस्तुत करिबा
0: सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रो छात्र छात्री मन निर्वाचन थी भाग नै नै पारन बली उच्च शिक्षा विभाग तरफ विज्ञप्ति थी स्पष्ट करा जाय छी ओडिशार जुआन पीढ़ी के सबुज शक्ति और सौर प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र थी दक्ष करवा लगी भुवनेश्वर विश्व दक्षता केन्द्र न गोटे

0: ग्रीन एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापना करा जाउछि। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ओएचपीसी तरफ 1,48,00,000 टंका खर्चा थी केन्द्र निर्माण करा जिबा। इबाबदे राज्य सरकार आ ओएचपीसी भितरे गुटे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हिचे। बुझामणा पत्र स्वाक्षर अवसर उपमुख्यमंत्री आ शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, शिल्प और दक्षता विकास मंत्री संपत चंद्र स्वाई उपस्थित थिले। राज्य पहला थर लागि अनुगुल जिल्लानु रक्त सिकुड़ी आक्रांतों लागि महालिया टीकाकरण कार्यक्रम मूल होइछे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महाली जातीय रक्त सिकुड़ी रक्तहीनता निराकरण कार्यक्रम आ रक्तहीनता मुक्त भारत स्वतंत्र अभियान के आज शुभारंभ कर टीकाकरण काम लागि अनुगुल जिला खनिज प्रतिष्ठान पांठि डीएमएफ नु आयबा 2 बछर लागि 2,80,00,000 टंका खर्चा कर। शहीद बाजी राउतंकर आत्मबलिदान सारा देश के मातृभूमि सेवा और स्वाधीनता लागि संग्राम करबार लागि तहकेतला बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। शहीद बाजी राउतंकर जयंती अवसर विधानसभा परिसर नथिबा तांकर प्रतिमूर्ति थी माल्यार्पण करिकिरी मुख्यमंत्री बाजी राउतंकर जीवनी आजिर जुआन पीढ़ी आउ छात्रछात्री मानकर लागि बड़ प्रेरणा हेकि रहिछे बोली कहिछन। ए अवसर में बाचस्पति सुरमा पाढ़ी खाद्य जोगाण आउ खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंकर सहित अलगा माने उपस्थित थिले। इन जन दिया जाई पारे जे ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ठाने 1926 अक्टोबर 5 तारीख जन्म नहीं बाजी राउत 12 बछर बयसे इंग्रेज मान विरोध लड़िकी देश लगी जीवन बलिदान दे खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु। प्रधानमंत्री सहरी आवास योजना 2 नंबर खेप थी सबुनु बेसी संस्कार कार्यकारी करा जाउथुबानु ओडिशा के केन्द्र गृह आउ नगर व्यापार मंत्रालय तरफ पुरस्कृत करा जाइछे। नुआदिल्ली न आज हेतिबा योजना रो पुरस्कार वितरणी समारोह थी ओडिशा के संबर्धित करा जाइछे। सहरी आवास बाबत प्रक्रिया के सरल करबार कार्यकारी व्यवस्था के बरकस करबार आउ योग्य हिताधिकारी मानकर पाके आवास ठीक भाबे पहुंचाबार दिगे निरंतर चेष्टा लागि ओडिशा के स्वीकृति मिलिछे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 बछर पूरा होइछे। जनसेवानु देश सेवा मंत्र आधारित जयजात्रा आउ यहादे तक चलिथिबा निरंतर अंगीकार बद्धता के इटा दर्शाउछे। सेवा आउ सुशासन रो ई दूरदृष्टि थी परिचालित हेकरी सरकार 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य पूरा करबा लागि सबुबेले काम करि आसुछन। समावेशी विकास आउ सामाजिक सशक्तिकरण दिगे ई समर्पण जीवन के बदलौछे। सेवा संकल्प अभियान रो आजिर खास कड़ी थी आसुन जानमा द्रव्य आउ सेवा कर जीएसटी बाबदे।
1: गुटे देश गुटे रकम टिकस व्यवस्था लागू करबा लागि आगरु बहुत टे सरकार चेष्टा करथिले मात्र को समको ई चेष्टा थी विफल हेबार के पड़ीतला। 3टा राज्य देकरी माल परिवहन करबार लागि 3 तकिया सीमा टिकस व्यवस्था देकरी पार हेबार के पड़ुतला। हेतिर लागि सबु दरबर दर दाम केतनी केते बढ़ी जाउथला। राज्य मानकु टिकस लगाबार क्षमता छड़ाबार के कहा जाउथला आउ केन्द्र से क्षति भरना करबा बोली कहारीर विश्वास नाई होथाय। हेतिर लागि सबु चेरेस्टा विफल होउथला आउ बड़ परिमाणर सीएसटी बकेया परिशोध हेइ नै पारुथे। 2014 बिलके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्षमता के आसला उतरु पहला राज्य मानकर पूर्णा बाकी थिबा टिकस सुझी देले। तार उतरु फी राज्य के बछरक राजस्व वृद्धि ग्यारंटी देले आउ ई ग्यारंटी गुटे टिकस व्यवस्था के विरोध करुथिबा राज्य मानकु बिल बुझाबार के समर्थ हेतिला। तार उतरु 2017 जुलाई मासे जीएसटी लागू हेला। टिकस सीमा कटिगला बजार गुटे हेइगला आउ राज्य बाहर व्यापार करबार के व्यवसायी मानक लागि व्यवस्था सहज हेइगला।
2: क्या जीएसटी आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या? हमारे देश में 30-40% टैक्स वाली चीजें थी, 30-40% और हिडन टैक्स हुआ करता था। सामान्य मानव को पता ही नहीं चलता और लोग लेते थे पैसे। बार बार टैक्स लगता था, हर मुकाम पर टैक्स लगता था। जीएसटी के कारण सिंप्लीफाई हुआ। आज 500 से ज्यादा चीजें जीरो टैक्स में आ गई जो किसी समय बहुत ऊंचे टैक्स हुआ करते। पिछले दिनों हमने जीएसटी बनाने के बाद करीब 1200-1250 ऐसी चीजें जो सामान्य जीवन की जरूरत है, कोई 18%, कोई 12%, कोई 5%, कोई 0% इतना नीचे ले आए। और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लगातार करते रहते हैं क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार नहीं करती है, जीएसटी काउंसिल में निर्णय हो।
1: जीएसटी व्यवस्था लागू करबार पछे सरकार कर मुख्य उद्देश्य हेउछि गुटे देश गुटे टिकस गुटे लक्ष्य आउ विकास। आकाशवाणी संबलपुर संवाद विभाग तरफ विस्मिता प्रधान।
0: 2026 बछर लागि भेषज विज्ञान थी नोबेल पुरस्कार पाइबार के आमेरिकार स्नायु विज्ञानी कार्ल डाइसेरोथ आउ तांकर दुई सहयोगी जर्मनीर पीटर हेगमेन आर जर्ज नागेल मनोनीत हेइछन। एप्टोजेनेटिक्स पद्धति बा मस्तिष्कर स्नायु विन्यास

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कार्लोस अल्काराज दूसरी बार जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में मुनार को हराया। नोवाक जोकोविच और एलेक्स डिमिनोर ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश किया। इगा स्वायतेक ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। पुर्तगाल ने यूईएफए

0: फुटबॉल नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेनिस से, जहां आज कई खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, जिसमें कार्लोस अल्काराज थे, नोवाक जोकोविच थे। वर्ल्ड नंबर 3 कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने हमवतन खिलाड़ी जाउमे मुनार को 5-7, 6-3, 6-1 से मात दी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, कोई भी टूर्नामेंट हो कार्लोस अल्काराज सबसे प्रोमिनेंट खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में यूएस ओपन हुआ था, उसमें अल्काराज को क्वार्टर फाइनल में हार मिली थी। आज कैसा प्रदर्शन रहा है कार्लोस अल्काराज का?
1: प्रशांत, आज का प्रदर्शन कार्लोस अल्काराज का काफी शानदार रहा है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले कुछ समय में अपने आप को साबित किया है। यूएस ओपन टूर्नामेंट में उनको हालांकि निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने जीत दर्ज करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो पहले सेट में वो 5-3 से आगे थे, लेकिन मुनार ने शानदार वापसी करी और 6-5 से स्कोर अपनी ओर कर लिया और पहला सेट भी जीत लिया। इसके बाद अल्काराज ने दूसरे सेट में वापसी की, उन्होंने ब्रेक करके 2-1 की बढ़त बनाई, फिर अगली सर्विस होल्ड करके स्कोर 3-1 किया और एक और ब्रेक के साथ 4-2 की बढ़त हासिल की। फिर उन्होंने एक और ब्रेक के साथ सेट 6-3 से अपने नाम किया। तीसरे सेट में उन्होंने लगातार अपनी सर्विस होल्ड करते हुए और हमवतन खिलाड़ी की सर्विस ब्रेक की और आगे बढ़े। तीसरे सेट में 4-0 के स्कोर पर वे 2 ब्रेक से आगे थे। हालांकि मुनार अपनी सर्विस बचा ले गए, लेकिन अल्काराज ने अपनी सर्विस पर 6-1 से मैच जीत लिया और 7 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मुकाबला अब फाइनल में जिरी लहका से होगा।
0: जी, बेहतरीन प्रदर्शन किया कार्लोस अल्काराज ने और दूसरी बार जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे। उधर चाइना ओपन टेनिस का भी मुकाबला खेला जा रहा है। एलेक्स डी मिनोर ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में वॉक ओवर मिलने के कारण उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। वॉक ओवर मिलने से पहले एलेक्स हुबर्ट हुरकराज से 6-4, 3-2 से आगे चल रहे थे। उधर ईगा स्वायतेक ने रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में डोना विकिक को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
2: छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा स्वायातेक ने आज चाइना ओपन के राउंड ऑफ 32 में 30वीं वरीयता प्राप्त डोना विकिक को हराया। उन्होंने एक सेट और 2 ब्रेक से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। स्वायातेक पहला सेट 4-6 से हार गई थी और दूसरे सेट में 2-5 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए सिया की खिलाड़ी की सर्विस 2 बार तोड़कर स्कोर 5-5 कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बचाए रखी और दूसरा सेट टाई ब्रेकर में चला गया। स्वायातेक ने दूसरे सेट का टाई ब्रेकर 7-0 से जीता। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे सेट की शुरुआत एक दूसरे की सर्विस तोड़कर की, लेकिन स्वायातेक ने 3-2 पर ब्रेक हासिल किया। उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखी और विकिक की सर्विस तोड़ी और फिर निर्णायक सेट में 6-2 से जीत हासिल की। अब स्वायातेक का सामना इवा जोविक से होगा। जोविक ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में कामिला रखी मोवा को 6-1, 7-5 से हराया था। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एलेक्स का। एलेक्स डी मिनोर ने वॉक ओवर मिलने के कारण पुरुष सिंगल्स के फाइनल में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल की क्या तस्वीर है
1: प्रशांत? दूसरे सेमीफाइनल में दिग्गज नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उनका मुकाबला कल एलेक्स डी मिनोर से होगा।
0: लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है जोकोविच का। यूएस ओपन में अभी बाहर हो गए थे जल्दी ही टूर्नामेंट से, लेकिन विशेष ये जो खिलाड़ी हैं टेनिस इतिहास के बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार है, चाहे मेदवेदेव की बात कर ले या जोकोविच ने, जो दोनों ने सेमीफाइनल में किस तरह का प्रदर्शन किया है और हाल के दिनों में कैसा रहा है इन खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन।
1: प्रशांत, दोनों ही खिलाड़ी बहुत शानदार हैं और उनका प्रदर्शन भी आज काफी शानदार रहा। हालांकि जोकोविच अपने अनुभव के दम पर मुकाबले को एक तरफा बनाकर ले गए। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो जोकोविच ने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम, जो कि सबसे ज्यादा है, और 101 ATP सिंगल्स टाइटल जीते हैं, जो दर्शाता है कि किस दर्जे के खिलाड़ी हैं जोकोविच। वहीं मेदवेदेव ने बहुत सारे टाइटल्स अपने जीवन में नहीं जीते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में कड़ी टक्कर देने की कोशिश करी जोकोविच को और वो जीत दर्ज नहीं कर सके। लेकिन मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन के फाइनल में जोकोविच को हराकर अपना पहला और एकमात्र ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था।
0: विशेष, बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन अगर हम महिला वर्ग की बात की जाए तो ईगा स्वायतेक ने तो क्वार्टर फाइनल में आज प्रवेश कर लिया, लेकिन

0: जो उस वर्ग में बाकी खिलाड़ी हैं उनका कैसा रहा है प्रदर्शन?
1: अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करें प्रशांत, तो कोको गॉफ का राउंड ऑफ 32 का मुकाबला सन शिनरन से चल रहा है, जहां उन्होंने अभी 5-5 की बराबरी पर पहला गेम चल रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन अगले दौर में जगह बनाएगा। वहीं स्वाइतेक के अलावा एलिना स्वेतिलोना, एलिस मार्टिन्स, इवा जोविक के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब राउंड ऑफ 16 में इगा स्वाइतेक इवा जोविक से मुकाबला करेंगी, वहीं एन ली एलिना स्वेतिलोना से भिड़ेंगी। एलिना कराइवा क्वीन झेंग के साथ खेलेंगी और अभी जारी मुकाबले के विजेता का मुकाबला एलिस मर्टेंस से होगा। और प्रशांत, इगा स्वाइतेक और एलिना स्वेतिलोना ये प्रतियोगिता जीतने की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं।
0: काफ़ी अहम टूर्नामेंट्स चल रहे हैं टेनिस में, विशेष चाइना ओपन की अगर हम बात कर लिया, जापान ओपन की, और टेनिस प्रशंसकों के लिए भी काफ़ी अहम है। एक तरफ जहां जोकोविच चाइना ओपन के फाइनल में, वहीं जापान ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्काराज बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। पुर्तगाल ने यूईएफए फुटबॉल नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना खेल रहे पुर्तगाल टीम ने 79वें मिनट में गोंकालो रामोस के विजय गोल की मदद से नॉर्वे को 2-1 से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्रिस्टोफर अजेर ने शानदार हाफ वॉली के जरिए मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन 2 मिनट बाद ही जोआओ कैंसेलो ने शानदार अंदाज में गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद मेजबान टीम ने बढ़त हासिल की। जोआओ फेलिक्स के शानदार पास पर गोंकालो रामोस ने गोल दागा। 2 बार नेशंस लीग का खिताब जीत चुकी पुर्तगाल की टीम ने मैच के अंत तक अपनी बढ़त कायम रखी और ग्रुप A4 में जीत का सिलसिला जारी रखा। हालांकि मैच के आखिरी मिनट में फ्रांसिस्को कांसेकाओ को दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे टीम की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर रास्मस होजललुंड और जोशुआ जर्कनी ने अहम भूमिका निभाई और डेनमार्क तथा नीदरलैंड्स ने भी महत्वपूर्ण जीत हासिल की। रास्मस की सदी हुई पेनल्टी ने डेनमार्क को इस कैंपेन की दूसरी जीत दिलाई और वेल्स के खिलाफ अपनी अजेय बढ़त को 5 मैचों तक बढ़ा दिया। वेल्स ने मैच की शुरुआत अच्छी की और गेंद पर ज्यादा कब्जा रखते हुए ब्रेंडन जॉनसन और लुइस कोमास के जरिए कई हमले किए। हालांकि धीरे धीरे डेनमार्क ने वापसी की और हाफ टाइम से पहले गुस्ताव स्कानसेन और ओलिवर प्रोवसगार्ड गोल करने के करीब पहुंच गए। दूसरे हाफ में वेल्स के गोलकीपर डैनी वार्ड ने रास्मस होजलुंड और स्कान केस के शॉट्स पर शानदार बचाव किए। हालांकि बाद में उनके एक गलत पास की वजह से डेनमार्क को पेनल्टी मिल गई। होजलुंड ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आसानी से गोल कर दिया। ये उनके पिछले 4 नेशंस लीग मैचों में तीसरा गोल था। वहीं आइंधोवन और नीदरलैंड्स ने सर्बिया को 2-1 से हराया। टीम की जीत में जोशुआ जर्कजी का गोल अहम रहा। इस जीत के साथ जावी हर्नांडेज की कोचिंग में नीदरलैंड्स की टीम अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखने में सफल रही। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस जीत के साथ पुर्तगाल की टीम ने ग्रुप में 2 जीत और 2 ड्रॉ का रिकॉर्ड कायम रखा और अपनी अजेय लय बरकरार रखी है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक देश के नाम किए। 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। 2 हफ्ते से अधिक चले इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने हर मैदान पर अपना दमखम दिखाया। देश के इस ऐतिहासिक अभियान में हरियाणा के प्लेयर्स का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 14 स्वर्ण समेत कुल 32 पदक जीते। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया तो फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुजीत कलकल ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। पुरुष पहलवान अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में सफल रहे, जबकि कीर्ति शर्मा, नीरू ढांडा ने भी गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के खिलाड़ियों को इस खास उपलब्धि के लिए भी बधाई दी है।
3: India will win gold. India has won gold in the women's team recurve event. A feat never done before. Celebrate this win. Breathe in this moment. History has been created. First time champions, 2 youngsters in Kirti and Kumkum along with Ankita Bhagat are stepping onto the prime podium with gold.
4: Out of here. और ये मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है यहाँ।
5: Hits the target. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event. This is absolutely fantastic.
6: That's the

0: Touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day. 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
1: Asian Games mein gold medal aa gaya hai Prabhu. Pehli baar hua hai ki men aur women dono hockey teams ne ek saath gold medal jeete hon. Los Angeles walo, swagat ki taiyari kar lo.
2: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games. Aichi Nagoya 2026 and make it 2-2.
1: Nazare rakhiye Vidya Ramraj, kya gold medal aa raha hai? Pichli baar silver tha, is baar gold medal aa gaya hai Prabhu. Kitabon mein likha jayega, Surjeet Kalkal ke naam ke saath chalta rahega. Kis tarah se trail kar rahe the, lekin kaisi wapsi ki aur ek gold medal Bharat ke liye dilwa diya. Surjeet Kalkal, असंभव वापसी को उन्होंने यहां पर साकार किया है.
3: Big news coming out of the 10K. Gulveer Singh has replicated his CWG form, has won a silver in the Asian Games for India.
4: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची, तीसरा 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवा और अंतिम मैच 17 अक्टूबर को बेंगलोर में होगा. विशेष लगातार टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. T20 का अगर बात की जाए, हाल ही में हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐसे में कितनी अहम होगी ये श्रृंखला और किन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें?
5: जी बिल्कुल प्रशांत, भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है पिछले कुछ समय में, चाहे 2024-2026 दोनों T20 विश्व कप की बात करें या एशिया कप और अभी एशियन गेम्स में गोल्ड, तो शानदार प्रदर्शन भारत का जारी है. यह श्रृंखला इसलिए भी अहम होगी क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जब कप्तानी संभाली तो उनकी शुरुआती दो सीरीज काफी खराब रही है. हालांकि अब उन्होंने लय जो है थोड़ी सी पकड़ी है और भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताया है अपनी कप्तानी में. अगर खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन पर निगाहें होंगी क्योंकि ओपनिंग पेयर में अभी वैभव सूर्यवंशी उनको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को अगर इस सीरीज में मौका मिलता है तो वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा. वहीं श्रेयस अय्यर जब से कप्तान बने हैं तब से बल्लेबाजी की लय उनकी थोड़ी कम दिखी है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो वापसी करते हैं अपनी बल्लेबाजी में. और गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे, तो बहुत ही अहम होगी इन दोनों के हिसाब से भी ये सीरीज.
4: विशेष लगातार बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाल का जो एक दिवसीय श्रृंखला गया है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन औसतन रहा है इस श्रृंखला में भी हमें देखने को मिला. तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख गेंदबाज होंगे जो इस श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे?
5: अर्शदीप सिंह जो है वो सबसे पहला नाम सामने आता है क्योंकि वो गेंदबाजी को लीड करेंगे पेस बॉलिंग अटैक को. वहीं कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई भी स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे. प्रिंस यादव और मयंक यादव के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस श्रृंखला से सीखें और आने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करें और भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन दृढ़ करें.
4: और हार्दिक पांड्या चोट के कारण काफ़ी समय से बाहर हैं, ऐसे में शिवम दुबे की भूमिका कितनी अहम हो जाती है?
5: शिवम दुबे बल्लेबाजी से काफ़ी प्रभावित कर ही रहे हैं हार्दिक पांड्या की गैर हाजिरी में या उनकी हाजिरी में. अगर 2025 की बात करें, 24 की बात करें, किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. गेंदबाजी पर थोड़ा ध्यान देना होगा.
4: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ. आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर

केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवास

0: दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our TST.
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र

0: की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
2: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एंक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में, जहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
3: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
4: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
5: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा

0: भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
2: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
1: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
4: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the centre and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint

नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहाँ जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम

0: रुक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय, जो हमने पहले ही आपको बताया भी है, वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2331048123717111 और 2371710 6, और इसके अलावा 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क कर रहे हैं तो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा का सिलसिला। और मैं देख रहा हूं कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।
0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे।
2: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेज जो है, उसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे।
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी
2: जी, जी।
1: देखिए, आप अगर अपना एसी, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किस से बना है, वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एल्युमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं, हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं उसमें ये मेटल्स, जिस जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए, रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत बड़े स्केल पे होता है और आपके सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
0: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान जी। पासवान जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: इकट्ठे प्रणाम सर।
0: जी जी।
3: हेलो, इकट्ठे प्रणाम सर।
0: जी नमस्कार। नमस्कार, कहिए
3: सर। ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर? सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग, जैसे कि

0: डिजिटल सामान और कुछ सुई इस प्रकार के जो दिए जाते हैं उससे बचने के लिए क्या करें सर?
1: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है।
2: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जो हम नया ख़रीदने जाते हैं, तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है, लोहा, कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत ये है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए और वो इकट्ठा हो के रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है या जो ब्लॉक में है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। सरकार की बहुत पॉलिसीज़ हैं पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय जी। अमित जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
3: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको अभी और आपके जितने भी विशेषज्ञ। मेरा दो सवाल था, ये सवाल था कि जैसे कि जितना भी कचरा हम वो फैलता है तो इसको मैं क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाए ताकि जन जन तक लिए पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है, सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे तक व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में, तो बहुत सारा वो एक समय 4 साल या 5 साल के बाद वो उपग्रह में हमेशा वो घूमते रहता है, तो वो भी कचरा है, तो बहुत सारा का तो कचरा आकाश में घूम रहा है, तो उसको निपटान के लिए कैसे क्या किया जाए ताकि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
1: जी, तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की ही बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
2: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, इस पर सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है, इस पर थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
1: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी कृपया कहिए क्या प्रश्न है आपका?
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते।
4: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट, मतलब कि जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं, वो इस तरह के वेस्ट को लेने से ही इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरनमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है, इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या

0: कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वेस्ट को अलग अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं, सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो, ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि नदियां हमारी तमाम जो हैं वो पर्वतों से आती हैं, और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ आपसे।
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है, इसके तीन रूप में दिखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, ये सबको पता है कि ये अगर पानी में हमारे खेतों में, हमारे ग्राउंड में जाएंगे, इससे पोल्यूशन होता है। इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक फॉर्मल, एक वैज्ञानिक प्लांट में होनी चाहिए, ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, महिला भी इन्वॉल्व है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ना कि हमारी हेल्थ पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात ये है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हम इम्पोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल हित के लिए भी हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं। आपने पूछा कि सरकार की क्या पॉलिसी, मुझे खुशी है कि पिछले 4-5 साल में सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है, जिसमें जितने रिसाइकलर हैं, जो साइंटिफिक पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जितने मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे ब्रांड हैं, जो हमें मोबाइल बेचते हैं, एसी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उन सबको जोड़ा है। और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे, तो उन्होंने बोला है भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए, और उसमें उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है, जो सारा डेटा ड्रिवन है। और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर, वो ब्रांड अगर नहीं करेगा, तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए, रिसाइकल हो जाए, कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने बोला अगर आपका कोटा है मान लीजिए 1 लाख टन, आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ज़रिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छे तरीके से वापस रिसाइकल हो, और इससे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुँचें, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिल के जुड़ना है, जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे हम सरकार के साथ, लोकल एनजीओस के साथ मिलें, और ये रिसाइकल इंडस्ट्री जो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, वहाँ तक पहुँचें। और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकलर बनिए, तो अपने एरिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी काम करेंगे।
1: बिल्कुल, आप भी अपने मित्रों में इस विषय में चर्चा कीजिए। और जहाँ तक कि हमारे एक पहले श्रोता ने भी कहा था कि क्या इसके बारे में कोई प्रचार अभियान है, तो हम आज जो ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है।

0: जिससे लोगों में जागृति आए, और निसंदेह आपके जो ये सवाल हैं महत्वपूर्ण, वो भी जागृति लाने में सहायक हैं। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी। कहिए जोशी जी, क्या प्रश्न है?
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: नमस्ते
1: एंकर साहब, आपको भी नमस्कार और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार
0: जी। प्रणाम, नमस्कार।
1: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं दो तीन छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें

0: आपके मंच के जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट
1: जी,
0: लगाती है आपकी जानकारी में हो पंचायत में? हाँ
1: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन
0: जी, हाँ जी। और
1: इसीलिए
0: एक
1: मैंने
0: दूसरा है
1: कहा
0: कोई,
1: कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है, आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब हमारे सेना जी जो आम नागरिक हैं शहरों के, गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
2: हाँ है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से, या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आप हैं, उनसे डायरेक्टली उठाएं। और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन ख़रीदते हैं, हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे, मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं। आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ दुकान में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है, तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है, और आपको मिलेंगे। और सरकार भी, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से, कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें। बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं, बट पूरा फोकस है, तो ये पहुँचेगा आप तक।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फोन के और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं तो एक ऐसा कोना ज़रूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: सर मेरा क्वेश्चन है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ये कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्पोज किया जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे कुछ जो डिस्पोज कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसमें से जो जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा मैं ये भी सुना है कि कुछ डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू।
1: जी, आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहाँ आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं, खास तौर पर ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
2: देखिए, ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो, वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें

0: कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक हैं, कुछ कम हैं। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है, तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा, और हमारे अगर ये लैंड में, पानी में वापस जाएगा।
1: जी, तो अब ये जो अगला प्रश्न है हम ये ले रहे हैं, हमें मिला है व्हाट्सएप के जरिए, और मनोज पान से नागपुर महाराष्ट्र से पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि ई वेस्ट में किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए, ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डीकम्पोज होता है क्या, और होता है तो कैसे। जी
0: नहीं, बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं, वो माँ बाप को बताते हैं, और अगले 50, 100, 80 साल तो उनको जीना है।
1: जी और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का भी एक
0: हाँ,
1: अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जी
0: और देखिए, ऐसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल, तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा, ना हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा, तो ये धातु, ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके से सोचें, प्लास्टिक का जैसे हमें पता है कि अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे, कांच का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होगा।
1: जी शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ। जी राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न क्या है।
2: जी, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार
2: कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीजें रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें सावधानी रखनी है। और दूसरी बात ये मेरा, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, हमारे बाग बगीचे में फर्क ना पड़े, तो इस चीजों को जो है रिसाइकल जो है किस तरह से हमें करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को।
0: देखिए, जैसे मैंने बोला, आप खुद तो रिसाइकल नहीं कर सकते, उसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल हो, तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे आप डालिए, अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी। घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे।
1: जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की ज़रूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है, यानी मरम्मत है, और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में।
0: बिल्कुल सर।

0: सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला रिसाइकल, रीयूज़, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें। पर इसमें इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं। हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है। हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है। बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है, पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल होके नया बने तो शायद सबके लिए अच्छा है। बट बिल्कुल रिपेयर करिए, ये तो हमारे देश में हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम फेंकते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो रीयूज़ करते रहें। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको अपने जजमेंट से, अपने राय से सोचना है कि आप इसका क्या करें।
1: जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से 3 कदम आप सुझाना चाहेंगे जिनको उठाते हुए, अपनाते हुए आम नागरिक जो है इस समस्या के समाधान में बहुत ही सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो आपको इसको कचड़े में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप कचड़े में डालते हैं तो जो बाकी कचरा है वो भी रिसाइकल नहीं हो पाता, किसी को उसको अलग करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को और खाने को अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझें और वो इस पे आगे ठीक डिसीजन ले पाएं।
1: जी, तो दोस्तों समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: ଆକାଶବାଣୀରେ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳେ ଗୁଞ୍ଜରଣ।
1: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10,00,000 डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
2: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR

0: बिहार से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries. Our correspondent reported that the discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations and discussed ways to further deepen bilateral cooperation in several areas, including trade and investment, innovation and AI, military exchange and defence production and nuclear energy. Both sides also reaffirmed their commitment to peace, diplomacy and reform of global institutions. The two leaders discussed the ongoing conflict situation in the world. President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan today and hosted a banquet in his honour. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's approach of multi-alignment enables it to engage with all important players in the world, including US, Russia and China. Dr. Jaishankar was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today on the theme India and the World, Adaptive by Design. He opined that the world is moving towards multipolarity, whose architecture and geometry are very different from the way it used to be.